ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क में पैदा होने वाले बच्चों के लिए खुदकार शहरियत के हक को महदूद करने की एक और कोशिश की है। उन्होंने जुमेरात को दो सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए। मौजूदा कवानीन के तहत मुल्क में पैदा होने वाले बच्चे अपने वालिदैन की कौमियतों से कतई नतर अमरीकी शहरी बन जाते हैं। एक हुक्मनामे में बर्थ टूरिज्म के खिलाफ सख्त इकदाम करने की ज़रूरत का हवाला दिया गया है। इस तरह की सियाहत में हामिला खवातीन जच्गी के लिए आर्जी वीज़ों पर अमरीका जाती हैं ताकि उनके बच्चे अमरीकी शहरियत हासिल कर सकें। दूसरा हुक्मनामा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों के अरकान के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत देने से इनकार के बारे में है। अपनी मौजूदा मुद्दत के पहले दिन गुज़िश्ता साल जनवरी में भी ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे जिसका मकसद अमेरिका में गैर कानूनी या आर्जी तौर पर रहने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों के लिए पैदाइशी हक शहरियत को ख़त्म करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जून में उस हुक्म को गैर आइनी करार दे दिया था। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना का कहना है कि वो इस साल के आखिर में भारत में अपनी जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटने का इरादा रखती हैं। इक्तदार से हटाए जाने को 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर हसीना ने बुध को नई दिल्ली में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से टेलीफोन पर खिताब किया। उन्होंने कहा, जैसा भी मुकद्दर मेरा मुंतजर हो, मैं अपने लोगों के पास वापस जाऊंगी। उनका मजीद कहना था, मैं जानती हूं कि वो मुझे पाबंदे सलासल कर सकते हैं या मुझे कत्ल किया जा सकता है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे वापस जाना है। 2024 में तालिब इल्मों की क़यादत में होने वाले मुजाहरों के सबब उनकी हुकूमत का तख्ता उलट गया था और उन्हें अपना मनसब छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना जलावतनी इख्तियार करते हुए भारत चली गई थी और अब तक वहीं मुकीम हैं। अक्वामे मुत्तहदा के मुताबिक उन्हें शोरिश के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का हुक्म देने पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ाम में 2025 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। क्रैकडाउन में 1,400 अफराद हलाक हो गए थे। NHK को मालूम हुआ है कि एक रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी के सर्वे के मुताबिक

0: जापान में कैरियर तब्दील करने वाले तकरीबन निसफ नौजवान जाय रोजगार पर मसनूई जहानत के इस्तेमाल में वसत के तनाजुर में मेहनत मुशक्कत वाली मुलाजमतों में दिलचस्पी रखते हैं। गाकुजो नामी कंपनी ने जुलाई से अगस्त तक 20 के पेटे के ऐसे कारकुनों का एक ऑनलाइन सर्वे मुनक्द किया जो मुलाजमतें तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। कंपनी को तकरीबन 200 जवाब मौसूल हुए। डिस्ट्रीब्यूशन या तामीराती मकामात पर मुशक्कती काम पर मुंतकिल होने के उनके इरादे के बारे में पूछे जाने पर 40.5% जवाब दहिंदगान का कहना था कि उन्होंने कभी ऐसी तब्दीली पर गौर नहीं किया। 48% ने कहा कि उन्होंने गौर किया है या दरख्वास्त दी है या वो किसी हद तक दिलचस्पी रखते हैं। सर्वे में ये सवाल किया गया था कि क्या उनकी दानिश में तख्लीकी मसनूई जहानत के वसी पैमाने पर राइज होने के सबब क्लैरिकल और नॉन कैरियर मुलाजमतें कम हो जाएंगी। 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। ये नतायज बज़ाहिर मुलाजमत के नौजवान मुतलाशियों में इस बहरान के एहसास की अक्कासी करते हैं कि दफ्तरी और क्लैरिकल कामकाज वगैरह के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। गाकुजो का कहना है कि बहुत से नौजवान कारकुन मसनूई जहानत के इस दौर में कैरियर बनाने के बारे में इतने परेशान हैं कि वो ऐसे रोज़गार में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं जिसकी जगह AI नहीं ले सकती। सर्वे फर्म ने मज़ीद कहा कि ये रुझान बुनियादी तौर पर नौजवानों में मज़ीद फैलने का इम्कान है। बावर किया जाता है कि मेहनत मुशक्क़त वाले रोज़गार में बढ़ती हुई दिलचस्पी की एक और वजह इन शोबों में उजरतों का बढ़ना है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के जनूब मगरबी जजायर को एक बड़े समंदरी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया है। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में 36,000 से ज्यादा घराने इस इलाके में जबरदस्त जलजले के 10 दिन बाद भी पानी से महरूम है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 अगस्त शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप एक भीषण तूफान की चपेट में आ गए हैं। मौसम अधिकारी प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों और तूफान संबंधी अन्य आपदाओं के प्रति आगाह कर रहे हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार शाम 5 बजे तक डॉल्फिन तूफान के ओकिनावा प्रिफेक्चर के नागो शहर के निकट होने का अनुमान था। ये लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। डॉल्फिन तूफान के केंद्र के पास लगातार 162 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इसके झोंकों की अधिकतम गति 216 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुक्रवार को ओकिनावा में अधिकतम 162 किलोमीटर प्रति घंटे जबकि खागोशिमा प्रिफेक्चर के अमामी क्षेत्र में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निरंतर हवाएं चलने का अनुमान है। ओकिनावा और अमामी में तेज झोंकों की रफ्तार

0: रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओकिनावा और अमामी में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रचंड हवाएं चल सकती हैं। मौसम अधिकारी ओकिनावा और अमामी के निवासियों से प्रचंड हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए भीषण भूकंप के 10 दिन बाद भी 36,000 से अधिक घरों में जलापूर्ति ठप है और इस महीने के अंत तक इसके पूरी तरह से बहाल होने की उम्मीद भी नहीं है। प्रीफेक्चर के अधिकारियों के अनुसार भूकंप के कारण लगभग 1,08,000 घरों में जलापूर्ति ठप हो गई थी, लेकिन इसे धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। इसके बावजूद यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा और कोसा नगरों के लगभग 36,880 घरों में पानी अब भी नहीं आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि उपचारित जल भंडारण सुविधाओं की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन घरों से जुड़ी पाइपों को हुए नुकसान के कारण जलापूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। ईरान के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में नए जहाजरानी मार्गों को लेकर ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। वहीं ईरान के एक मीडिया केंद्र का कहना है कि योजना में चुंगी और सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने इस मामले से संबद्ध विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा कि ईरान जहाज़ों का प्रवेश नियंत्रित करेगा और ओमान के साथ मिलकर उनकी निकासी का प्रबंधन करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि फारस की खाड़ी में प्रवेश करने वाले जहाज़ ईरान के पास से गुजरने वाले उत्तरी मार्ग का उपयोग करेंगे, जबकि खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाज़ ओमान के पास से गुजरने वाले दक्षिणी मार्ग का उपयोग करेंगे। कुछ समय बाद सभी जहाज़ एक मध्यवर्ती मार्ग पर चलने लगेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जहाज़ों को बीमा और ईंधन भरने जैसी समुद्री सेवाओं के साथ साथ पर्यावरणीय लागत का भुगतान भी करना होगा। इस योजना का विरोध हो रहा है। सीएनएन ने खबर दी है कि जहाजरानी उद्योग से जुड़े 8 प्रमुख समूहों ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को एक खुला पत्र भेजकर प्रस्तावित चुंगी और शुल्क अस्वीकार करने का आग्रह किया है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में जन्मे बच्चों के लिए स्वतः नागरिकता को सीमित करने का एक और प्रयास किया है। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। मौजूदा नियमों के तहत माता पिता की नागरिकता चाहे जो भी हो, अमरीका में पैदा बच्चों को अमरीकी नागरिकता मिल जाती है। एक आदेश में प्रसव पर्यटन पर नकेल कसने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि गर्भवती महिलाएं अस्थायी वीजा पर अमरीका की यात्रा करती हैं, ताकि वे बच्चों को वहां जन्म देकर उन्हें अमरीकी नागरिकता दिला सकें। एक अन्य आदेश में विदेशी आतंकी गुटों के सदस्यों के अमरीका में पैदा बच्चों को नागरिकता देने से इनकार किया गया है। पिछले साल जनवरी में वर्तमान कार्यकाल के पहले दिन ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य उन बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करना था जिनके माता पिता अमरीका में गैरकानूनी रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जून में फैसला सुनाया कि ये आदेश असंवैधानिक है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि वे इस साल के अंत में भारत में अपने निर्वासन से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। सत्ता से बेदखल किए जाने के 2 साल पूरे होने के अवसर पर हसीना ने बुधवार को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में ऑनलाइन भाग लिया। उन्होंने कहा, चाहे मेरे भाग्य में जो भी हो, मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मुझे मार सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण 2024 में हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्हें पद से हटना पड़ा था। इसके बाद वे भारत भाग गई थीं। तब से वे भारत में निर्वासन में रह रही हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 में हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने छात्र विद्रोह को दबाने का आदेश दिया था जिसमें लगभग 1400 लोगों की जान चली गई थी। एनएचके के अनुसार एक रिक्रूटमेंट कंपनी के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कार्यस्थल पर एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच जापान में नौकरी बदलने वाले लगभग आधे युवा ब्लू कॉलर नौकरियों में रुचि रखते हैं। गाकुजो कंपनी ने जुलाई से अगस्त के बीच 20 से 29 वर्ष की आयु के उन नौकरी पेशा लोगों का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जो नौकरी बदलने पर विचार कर रहे थे। लगभग 200 लोगों ने जवाब दिया। वितरण या भवन निर्माण स्थलों पर काम करने की मंशा के बारे में पूछे जाने पर 40.5% ने कहा कि उन्होंने नौकरी बदलकर ऐसी जगहों पर काम करने के बारे में कभी विचार नहीं किया है, जबकि 48% ने कहा कि उन्होंने इस पर विचार किया है या आवेदन किया है या इसमें कुछ हद तक रुचि रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि जेनरेटिव एआई के व्यापक उपयोग से क्लेरिकल और गैर पेशेवर नौकरियों में कमी आएगी, तो 84.7% ने हाँ में जवाब दिया। सर्वेक्षण के नतीजों से साफ है कि नौकरी तलाश रहे युवाओं के बीच चिंता है कि डेस्क वर्क और क्लेरिकल काम ज्यादा से ज्यादा एआई करेगा। गाकुजो कंपनी के अनुसार एआई के युग में अपने पेशेवर जीवन को लेकर कई युवा कर्मचारी इतने चिंतित हैं कि वे ऐसे कामों में रुचि ले रहे हैं जिन्हें एआई नहीं कर सकता। कंपनी को लगता है कि ये रुझान मुख्य रूप से युवाओं में और बढ़ सकता है। ब्लू कॉलर नौकरियों के प्रति बढ़ती रुचि के पीछे एक अन्य कारण इन क्षेत्रों में वेतन वृद्धि को माना जा रहा है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।